आंसुओं पर नजर गई, कभी आस आस में भर गई, इसी हाल में रही जिंदगी, इसी कश्मकश में गुजर गई। न तो रास आया है बागपन, न तो सादगी हुई जाने मन, कभी एक कफस कभी एक चमन, रहा गर्दिशों का यही चलन। न चमन का रंज मिटा सके, न कफस की याद भुला सके, न करार हम कहीं पा सके, न कहीं ठिकाना बना सके। कभी उन अजीजों की याद में के चमन में जिनसे मिले थे हम, कभी उन रफीकों की याद में के कफस में जो